0: India's putting its semiconductor ambitions on display as Prime Minister Modi inaugurates the Semicon India 2026 in the national capital. The three-day event brings together more than 600 companies, delegates and 52 countries and around 50,000 expected visitors. The UPI fee row is now turning into a full-blown political showdown. Leader of opposition Rahul Gandhi has demanded a rollback of UPI fees. The government, meanwhile, is standing firm, with sources indicating that there will be no reconsideration. West Asia war is no longer just playing out on the battlefield. It's also now creeping closer to some of the region's most sensitive locations and the infrastructure that keeps the world's oil markets moving. All right, tracking the fresh updates coming in at this hour. Now ahead of Prime Minister Modi's 76th birthday, which essentially is today, B2B workers in Kolkata's Kalighat marked the occasion with a 76-kilogram milk abhishek. Prime Minister Modi's portrait was bathed in milk as supporters gathered to celebrate his birthday in a symbolic gesture. A chef in Tamil Nadu has served up a birthday tribute with a healthy twist. 76 varieties of naturally prepared food were displayed for the Prime Minister's birthday. The chef also carved portraits of Prime Minister Modi and his mother on a watermelon. And in Ahmedabad, the Prime Minister's birthday celebrations took a women-centric turn. A special event promoting women's empowerment saw participants posing for selfies with the Prime Minister's posters and banners under the theme Gau Man Ki Shakti Sanskriti Ko Salaam. Alright, remember that India is celebrating Prime Minister Modi's 76th birthday with nationwide service initiatives and public events. BJP has planned various programs across the country to mark the Prime Minister's 76th birthday and his 25 years of public service, with Union Home Minister Amit Shah flagging off a bike rally from Vadnagar in Gujarat to Varanasi in Uttar Pradesh. Now, the party will celebrate the Prime Minister's birthday as Seva Divas. BJP National President Nitin Naveen will perform a puja for the Prime Minister in Ujjain. He will also inaugurate a blood donation camp at the party headquarters in the national capital. A nationwide cleanliness campaign will also be organised to mark the Prime Minister's birthday.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस मौके पर हमसे खास बातचीत करने के लिए मौजूद है उनके टीचर एचसी पटेल सर. पटेल सर, किस तरीके के पीएम मोदी स्कूल में रहा करते थे, उनसे जुड़ी हुई कुछ यादें अगर जो आप साझा कर सके.
2: मैं बोला फ्रॉम जून 65 टू मई 67 स्टैंडर्ड 10 एंड 11 दसवीं और ग्यारहवीं कक्षा दो साल तक उनको मैंने मैथ्स और साइंस गणित और विज्ञान पढ़ाया है. वो मैथमेटिक्स में वो प्रॉफिट लॉस का मैंने इलस्ट्रेशन दिया. वो समझते थे प्रॉफिट और लॉस 10% 20% हो सकता है. मैंने बोला नहीं नरेंद्र भाई, प्रॉफिट और लॉस 300% भी हो सकता है, 400% भी प्रॉफिट हो सकता है.
1: वडनगर से निकलने के बाद क्या कभी आपको, पहले मैं ये पूछना चाहूँगी, क्या आपको लगा था कि कभी नरेंद्र मोदी सीएम बन पाएंगे, सीएम के बाद आप पीएम बन गए?
2: हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी या तो एक अडवाणी, मुझे पूरा पता, वो दोनों में से एक की कृपा से वो सीएम हो गए. जब सीएम हुए उनकी सौगंध विधि हो गई, गवर्नर ने करवा दी, तो उस दफे मैं गांधीनगर गया था. ओ नरेंद्र भाई, ओ नरेंद्र भाई, वो तो सुनते नहीं, क्योंकि वो मॉब होता है ना, टोला भीड़ होती है, तो दौड़ते तो मैं तो दौड़ नहीं सकता. बस वो डी एल पटेल दिन दशरथ डी एल पटेल हमारे दीदा में के कर्मचारी, वो ग्यारहवीं कक्षा में थे, वो साथ में पढ़ते थे. ओ नरेंद्र भाई, वो एस सी पटेल आपको बुला रहे हैं. तो नरेंद्र भाई पीछे लौटे, वापस लौटे, दो चार स्टेप मुझे मेरे चरण स्पर्श किए, मैंने के हाथ में मैंने आशीर्वाद दिए, ये मुझे याद आता है.
0: और ट्रैकिंग सम फ्रेश अपडेट्स फॉर यू. नाउ रिमेंबर दैट इंडिया इज पुटिंग इट्स

0: Sí.
1: देश का टायर जेके टायर
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: let's begin with our top story, and that's Prime Minister Modi's 76th birthday. And the whole country is celebrating that event. We have nationwide service initiatives and public events that have been lined up in the course of the day. BJP has planned various programs across the country in order to mark the Prime Minister's birthday. And it has been, of course, 25 years of him being in public service. So this 76th birthday and his 25 years of public service both are being celebrated. We have Amit Shah, the Home Minister, flagging off a bike rally from Vadnagar in, this is in Gujarat, to Varanasi in Uttar Pradesh. And the party will celebrate the Prime Minister's birthday as Seva Divas. The BJP National President, we have Nitin Naveen, who will be performing puja for the Prime Minister in Ujjain. He will also inaugurate a blood donation camp at the party's headquarters here in the national capital. Now, a nationwide cleanliness campaign will also be organized in order to mark that celebration as we all come together to celebrate Prime Minister Modi's 76th birthday.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस मौके पर हमसे खास बातचीत करने के लिए मौजूद है उनके टीचर एचसी पटेल सर. पटेल सर, किस तरीके के पीएम मोदी स्कूल में रहा करते थे, उनसे जुड़ी हुई कुछ यादें अगर जो आप साझा कर सके.
2: मैंने बोला फ्रॉम जून 65 टू मे 67 स्टैंडर्ड 10 एंड 11 दसवीं और ग्यारहवीं कक्षा दो साल तक उनको मैंने मैथ्स और साइंस गणित और विज्ञान पढ़ाया है. वो मैथमेटिक्स में वो प्रॉफिट लॉस का मैंने इलस्ट्रेशन दिया. वो समझते थे प्रॉफिट और लॉस 10% 20% हो सकता है. मैंने बोला नहीं नरेंद्र भाई, प्रॉफिट और लॉस 300% भी हो सकता है, 400% भी प्रॉफिट हो सकता है.
1: वडनगर से निकलने के बाद क्या कभी आपको, पहले मैं ये पूछना चाहूँगी, क्या आपको लगा था कि कभी नरेंद्र मोदी सीएम बन पाएंगे, सीएम के बाद आप पीएम बन गए?
2: हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी या तो एके अडवाणी, मुझे पूरा पता है, वो दोनों में से एक की कृपा से वो सीएम हो गए. जब सीएम हुए उनकी सौगंध विधि हो गई, गवर्नर ने करवा दी, तो उस दफे मैं गांधीनगर गया था. ओ नरेंद्र भाई, ओ नरेंद्र भाई, वो तो सुनते ही नहीं, क्योंकि वो मॉब होता है ना, टोला भीड़ होती है, तो दौड़ते दौड़ते, तो मैं तो दौड़ नहीं सकता. बस वो डी एल पटेल दशरथ भाई, डी एल पटेल हमारे नेता में के कर्मचारी, वो ग्यारहवीं कक्षा में थे, वो साथ में पढ़ते थे. ओ नरेंद्र भाई, वो एस सी पटेल आपको बुला रहे हैं. तो नरेंद्र भाई पीछे लौटे, वापस लौटे, दो चार स्टेप मुझे मेरे चरण स्पर्श किए, मैंने के हाथ में मैंने आशीर्वाद दिए, ये मुझे याद आता है.
1: पीएम मोदी को आप कब से जानते हैं?
3: हम बचपन से, यानी धोरण चार से हम साथ में स्कूल के अंदर, प्राइमरी स्कूल के अंदर जो आज प्रेरणा स्कूल बनी है उसी के अंदर धोरण चार पाँच छः और सात तक हमने प्राइमरी एजुकेशन लिया.
1: मतलब आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ प्राइमरी स्कूलिंग से साथ में?
3: हाँ, हम प्राइमरी स्कूल से ही, धोरण चार से हम साथ में हैं, चार पाँच छः और सात तक प्राइमरी स्कूल जो आज प्रेरणा स्कूल बनी है उसी के अंदर हमने साथ में एजुकेशन लिया. आरएसएस की फी दे के हम मेंबर बने, लेकिन मैं मुस्लिम होने के नाते 3 दिन के बाद मेरा रुपया वापिस आया और मैं मेंबर न बन सका. लेकिन उस वक्त मोदी साहब ने मुझे बताया जब तुझे नहीं बनाते तो मैं भी मेंबर नहीं बनता. लेकिन मैंने बोला कि भाई तेरे पास भी चड्डी पहनने को नहीं है, मेरे पास भी चड्डी पहनने को नहीं है. आरएसएस वाले अपनों को दो चड्डी देते हैं 1 रुपये में, तो दो चड्डी लेके आओ, एक चड्डी मुझे देना. तो मोदी साहब बहुत हंसे बचपन में, और जाके तुम बोलता है तो मैं सभ्य बन जाता हूँ, और उस दिन से वो सभ्य बन चुके हैं. और ये बात मैंने 2009 के अंदर जब सीएम थे तब मैंने गुजरात के अंदर उनकी ऑफिस में ये बात लगाई थी, और हम दोनों जन बहुत हंसे थे कि दौलत खान तेरी बात सही है कि एक चड्डी की मैं लेने के लिए तुमको आरएसएस में भेजा था, आज पूरे गुजरात के धनी हो, तो मुझे उन्होंने वादा किया था कि तू रिटायर होकर आ जा, तुझे भी आधा गुजरात दूंगा. लेकिन मैं, मेरी फैमिली कंडीशन की वजह से, उन्होंने मुझे अहमदाबाद भाजपा के संगठन में भी लेटर दिया, लेकिन मैं फैमिली कंडीशन की वजह से मैं जा नहीं सका.
0: अखिलेश शर्मा, माय कॉलीग, जॉइनिंग अस इन ऑर्डर टू गेट अस डिटेल्स अबाउट

0: We're talking about the UPI row that's turning completely political. We're talking about a showdown with Leader of Opposition Rahul Gandhi demanding the rollback of what he calls a UPI tax, accusing the government of surrendering to the pressure of the United States. But the government sources are questioning the Congress's position, pointing to the Parliamentary Standing Committee on Finance report, which was adopted on the 12th of August. Now, the report had called for a self-reliant revenue model for the UPI and stressed the need for financial sustainability. Five Congress MPs attended that meeting, and sources say that there was no dissent that was recorded at the time. The government, meanwhile, is standing firm, with sources indicating that there will be no reconsideration. And now the controversy has reached the Supreme Court, with a plea challenging the new UPI charges and the MDR framework that comes into effect literally in less than a month's time from now, on the 15th of October.
1: Indraji was once asked whether she leans left or right. And her response was, I don't lean left, I don't lean right, I stand straight. Modi ji has a completely different concept. He's neither left nor right. He has decided to lie down straight and prostrate himself in front of Donald Trump. He's put a tax on every single Indian person by taxing UPI and giving huge amount of money to the United States. Modi ji, please stop lying down in front of the United States. Have a spine, khade ho jaiye, aur UPI tax ko wapis lijiye.
2: जब यूपीआई की शुरुआत हुई थी तो बहुत लोगों को लग रहा था कि यह इनिशिएटिव किसी भी सूरत में सफल नहीं होने पाएगा और बहुत लोग यह पूछ रहे थे इससे गरीब को कैसे फायदा पहुंचेगा इस यूपीआई से. पिछले महीने ही यूपीआई को लागू किए 10 साल पूरे हुए हैं. सिर्फ अगस्त महीने में ही यूपीआई से 23.66 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रन ने यूपीआई की प्रशंसा करते हुए कहा कि यूपीआई केवल एक टेक स्टोरी नहीं है, यह एक सिविलाइजेशनल स्टोरी है.
3: Now, new Modi tax already enforced in this country through this UPI, 0.4% tax. That is a new Modi tax. That tax has came because of the surrendering attitude of the Modi to America, US. Every day they are giving punishment to the people of this country. Every day common people are in a great distress. The entire country is for a change now. They know that. For covering up that changing attitude, they are going through these malpractices in the election process, which we cannot accept at all.
4: आज यूपीआई सिस्टम पर जो एमडीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट डाला गया है 0.4% कि 2000 रुपए तक अगर आपका ट्रांजैक्शन होगा सामान्य ग्राहक का उपभोक्ता का तो उस पर 0% एमडीआर का चार्ज लगेगा. मैं दोबारा कह रहा हूं 0%. और आज यूपीआई के सारे ट्रांजैक्शन मतलब 360 लाख करोड़ की जो हम बात कर रहे थे उसमें से 96% 2000 रुपए से कम होते हैं. मतलब केवल 4% ट्रांजैक्शंस पर यह कॉस्ट डाला जाएगा.
5: प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कमिटी आर प्रिविलेज्ड and it is not appropriate to comment about it. But with regard to UPI and the fact that there are going to be transaction charges heavy, there is concern across the country and a sense of outrage also. So obviously, you know, what agitates the people of the country does find reflection and articulation in parliamentary proceedings.
6: 9.82 लाख करोड़ रुपीस इतने की ट्रांजैक्शंस हमारे देश में हर महीने यूपीआई से हो रही हैं. 2000 रुपए तक किसी भी टाइप की यूपीआई पेमेंट बिल्कुल फ्री है. 2000 रुपए से ऊपर भी पर्सन टू पर्सन यूपीआई ट्रांजैक्शंस बिल्कुल फ्री है. पर्सन टू मर्चेंट पे किसी दुकान के ऊपर 2000 रुपए के ऊपर अगर वो दुकानदार छोटा दुकानदार है जिसका महीने का कलेक्शन 1 लाख रुपए तक है तो टिकट साइज चाहे कुछ भी हो कोई चार्ज नहीं लगेगा. तो पर्सन टू मर्चेंट में भी आप चाहे 2500 दें 5000 दें 7500 दें अगर छोटे दुकानदार को देते हैं तो कुछ नहीं लगेगा. पर बड़े मर्चेंट्स को I'm

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर, जेके टायर।

0: done at this particular place, and after which the Jal Abhishek will be done at Hatkeshwar temple, and then the bike rally moves to Kashi Vishwanath in Varanasi. So it's a very long program. Union Health Minister earlier was in Ahmedabad. There were a lot of cleanliness program which was going on. There are different blood donation camps which are going on that are done. Now he'll be traveling over here in Vadnagar, and bike rally and Jal Abhishek program are scheduled over here. And let me tell you, around this particular talao, this Sharmista talao, there are different locations made wherein the locals of Vadnagar who are coming over here, they will be watching this particular program live. There are also different screens which are made over here so that who cannot watch this program live, because there is a lot of crowd which is continuously coming in, they can see it through the LED screen. So a lot of arrangements been done at Prime Minister Narendra Modi's birthday over here at his birthplace in Vadnagar, and NDTV is bringing you live updates, live telecast from Vadnagar.
1: Saurabh, so we're talking about, you know, NDA allies in Varanasi to bike rallies that you mentioned, to Seva Sankalp Abhiyan, which starts from today and goes on for a month, in fact, till the 17th of October. We're talking about a series of service-oriented programs and public outreach initiatives. Saurabh also spoke with the teacher of Prime Minister Modi. Let's listen in to what Prime Minister Modi's teacher had to say.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस मौके पर हमसे खास बातचीत करने के लिए मौजूद है उनके टीचर एचसी पटेल सर. पटेल सर, किस तरीके के पीएम मोदी स्कूल में रहा करते थे, उनसे जुड़ी हुई कुछ यादें अगर जो आप साझा कर सके.
2: मैं बोला फ्रॉम जून 65 टू मे 67 स्टैंडर्ड 10 एंड 11 दसवीं और ग्यारहवीं कक्षा दो साल तक उनको मैंने मैथ्स और साइंस गणित और विज्ञान पढ़ाया है. वो मैथमेटिक्स में वो प्रॉफिट लॉस का मैंने इलस्ट्रेशन दिया. वो समझते थे प्रॉफिट और लॉस 10% 20% हो सकता है. मैंने बोला नहीं नरेंद्र भाई, प्रॉफिट और लॉस 300% भी हो सकता है, 400% भी प्रॉफिट हो सकता है.
0: वडनगर से निकलने के बाद क्या कभी आपको, पहले मैं ये पूछना चाहूँगी, क्या आपको लगा था कि कभी नरेंद्र मोदी सीएम बन पाएंगे, सीएम के बाद आप पीएम बन गए?
2: हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी या तो एक एडवाणी, ये पूरा पद वो दोनों में से एक की कृपा से वो सीएम हो गए. जब सीएम हुए उनकी सौगंध विधि हो गई, गवर्नर ने करवा दी, तो उस दफे मैं गांधीनगर गया था. ओ नरेंद्र भाई, ओ नरेंद्र भाई, वो तो सुनते ही नहीं, क्योंकि वो मॉब होता है ना, टोला भीड़ होती है, तो दौड़ते दौड़ते, तो मैं तो दौड़ नहीं सकता. बस वो डी एल पटेल दशरथ भी डी एल पटेल हमारे देना में के कर्मचारी, वो ग्यारहवीं कक्षा में थे, वो सातवें पढ़ते थे. ओ नरेंद्र भाई, वो एस सी पटेल आपको बुला रहे हैं. तो नरेंद्र भाई पीछे लौटे, वापस लौटे, दो चार स्टेप मुझे मेरे चरण स्पर्श किए, मैंने के हाथ में मैंने आशीर्वाद दिए, ये मुझे याद आता है.
0: पीएम मोदी को आप कब से जानते हैं?
3: हम बचपन से, यानी दोनों चार से हम साथ में स्कूल के अंदर, प्राइमरी स्कूल के अंदर जो आज प्रेरणा स्कूल बनी है उसी के अंदर दोनों चार पाँच छः और सात तक हमने प्राइमरी एजुकेशन लिया.
0: मतलब आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ प्राइमरी स्कूलिंग से साथ में?
3: हाँ, हम प्राइमरी स्कूल से ही दोनों चार से हम साथ में हैं, चार पाँच छः और सात तक प्राइमरी स्कूल जो आज प्रेरणा स्कूल बनी है उसी के अंदर हमने साथ में एजुकेशन लिया. आरएसएस की फी दे के हम मेंबर बने, लेकिन मैं मुस्लिम होने के नाते तीन दिन के बाद मेरा रुपया वापस आया और मैं मेंबर न बन सका. लेकिन उस वक्त मोदी साहब ने मुझे बताया जब तुझे नहीं बनाते तो मैं भी मेंबर नहीं बनता. लेकिन मैंने बोला कि भाई तेरे पास भी चड्डी पहनने को नहीं है, मेरे पास भी चड्डी पहनने को नहीं है. आरएसएस वाले अपनों को दो चड्डी देते हैं एक रुपये में, तो दो चड्डी लेके आओ, एक चड्डी मुझे देना. तो मोदी साहब बहुत हंसे बचपन में, और जाके तुम बोलता है तो मैं सभ्य बन जाता हूँ, और उस दिन से वो सभ्य बन चुके हैं. और ये बात मैंने 2009 के अंदर जब सीएम थे तब मैंने गुजरात के अंदर उनकी ऑफिस में ये बात लगाई थी, और हम दोनों जन बहुत हंसे थे कि दौलत खान तेरी बात सही है कि एक चड्डी की मैं लेने के लिए तुमको आरएसएस में भेजा था, आज पूरे गुजरात के धनी हो, तो मुझे उन्होंने वादा किया था कि तू रिटायर होकर आ जा, तुझे भी आधा गुजरात दूंगा. लेकिन मैं मेरी फैमिली कंडीशन की वजह से, उन्होंने मुझे अहमदाबाद भाजपा के संगठन में भी लेटर दिया लेकिन मैं फैमिली कंडीशन की वजह से मैं जा नहीं सका.
1: And let's just also get you details of how the country is celebrating Prime Minister Modi's 76 years of his birth and also 25 years of him in public service. So ahead of that birthday celebration, the BJP workers in Kolkata's Kali Ghat marked the occasion with 76 kilograms of milk abhishek. Prime Minister Modi's portrait was put in milk, literally giving him a bath in milk as far as that portrait is concerned, and as supporters gathered to celebrate his birthday in a very symbolic gesture. And then switching tracks to how in Tamil Nadu a chef has served up a birthday tribute with a healthy twist. We're talking about 76 varieties of naturally prepared food that was displayed for Prime Minister Modi's birthday. The chef also carved portraits of Prime Minister and his mother on a watermelon. And going to Ahmedabad, where Prime Minister Modi's birthday celebration took a women-centric turn. A special event promoting women's empowerment saw participants posing for selfies with the poster of the Prime Minister, with banners under the theme, Gau Man Ki Shakti, Sanskriti Ko Salaam.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: Prime Minister Modi understands dosti. He understands that friendship has to mean something. For the Maldives, it has. India has been there when we needed a friend. In emergencies, in difficult moments, during the pandemic, in our development journey, time and time again, India has been our first responder and most dependable partner. 25 years in public leadership is an extraordinary milestone. But for me, the story of Narendra Modi is also told through the relationships he has built along that journey. You have been a true friend of the Maldives. Congratulations on this remarkable milestone. I wish you good health, continued strength, and every success in the years ahead.
1: रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग

0: Mr. Modi, where he grew up, spent his childhood, faced a lot of struggles, to Varanasi in Uttar Pradesh, and that is the area, the place that is his constituency of Varanasi, where that bike rally, which is going to cover about 40,000 kilometers and span over 10 states, is going to culminate on the date of the 7th of October, when the Prime Minister, when Narendra Modi became the Chief Minister of the state of Gujarat 25 years ago. So this doesn't mark just the 76th birthday of the Prime Minister, but also 25 years of being in public service, starting with being the Chief Minister of Gujarat to being the Prime Minister over the last 12 years of the country.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस मौके पर हमसे खास बातचीत करने के लिए मौजूद है उनके टीचर एच सी पटेल सर. पटेल सर, किस तरीके के पीएम मोदी स्कूल में रहा करते थे, उनसे जुड़ी हुई कुछ यादें अगर जो आप साझा कर सके.
2: मैं बोला फ्रॉम जून 65 टू मई 67 स्टैंडर्ड 10 एंड 11 दसवीं और ग्यारहवीं कक्षा दो साल तक उनको मैंने मैथ्स और साइंस गणित और विज्ञान पढ़ाया है. वो मैथमेटिक्स में वो प्रॉफिट लॉस का मैंने इलस्ट्रेशन दिया, वो समझते थे प्रॉफिट लॉस 10% 20% हो सकता है. मैंने बोला नहीं नरेंद्र भाई, प्रॉफिट और लॉस 300% भी हो सकता है, 400% भी प्रॉफिट हो सकता है.
1: वडनगर से निकलने के बाद क्या कभी आपको, पहले मैं ये पूछना चाहूँगी, क्या आपको लगा था कि कभी नरेंद्र मोदी सीएम बन पाएंगे, सीएम के बाद आप पीएम बन गए?
2: हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी या तो एके आडवाणी, मुझे पूरा पता है, वो दोनों में से एक की कृपा से वो सीएम हो गए. जब सीएम हुए उनकी सौगंध विधि हो गई, गवर्नर ने करवा दी, तो उस दफे मैं गांधीनगर गया था. ओ नरेंद्र भाई, ओ नरेंद्र भाई, वो तो सुनते नहीं, क्योंकि वो मॉब होता है ना, टोला भीड़ होती है, तो दौड़ते तो मैं तो दौड़ नहीं सकता. बस वो डी एल पटेल दिन 10 रुपये डी एल पटेल हमारे देना में के कर्मचारी, वो 11वीं कक्षा में थी, वो 7वीं पढ़ते थे. अच्छा। वो नरेंद्र भाई वो एस सी पटेल आपको बुला रहे हैं. तो नरेंद्र भाई पीछे लौटे, वापस लौटे, दो चार स्टेप मुझे मेरे चरण स्पर्श किए, मैंने के हाथ में मैंने आशीर्वाद दिए, ये मुझे याद आता है.
1: पीएम मोदी को आप कब से जानते हैं?
3: हम बचपन से, यानी 2004 से हम साथ में स्कूल के अंदर, प्राइमरी स्कूल के अंदर, जो आज प्रेरणा स्कूल बनी है, उसी के अंदर 2004, 2005, 2006 और 2007 तक हमने प्राइमरी एजुकेशन लिया.
1: मतलब आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ प्राइमरी स्कूलिंग से साथ में?
3: हाँ, हम प्राइमरी स्कूल से ही 2004 से हम साथ में हैं, 4, 5, 6 और 7 तक प्राइमरी स्कूल, जो आज प्रेरणा स्कूल बनी है, उसी के अंदर हमने साथ में एजुकेशन लिया. आरएसएस की फी दे के हम मेंबर बने, लेकिन मैं मुस्लिम होने के नाते 3 दिन के बाद मेरा रुपया वापिस आया और मैं मेंबर न बन सका. लेकिन उस वक्त मोदी साहब ने मुझे बताया, जब तुझे नहीं बनाते तो मैं भी मेंबर नहीं बनता. लेकिन मैंने बोला कि भाई तेरे पास भी चड्डी पहनने को नहीं है, मेरे पास भी चड्डी पहनने को नहीं है. आरएसएस वाले अपनों को 2 चड्डी देते हैं 1 रुपये में, तो 2 चड्डी ले के आओ, 1 चड्डी मुझे देना. तो मोदी साहब बहुत हंसे बचपन में, और जाके तुम बोलता है तो मैं सभ्य बन जाता हूँ, और उस दिन से वो सभ्य बन चुके हैं. और ये बात मैंने 2009 के अंदर जब सीएम थे, तब मैंने गुजरात के अंदर उनकी ऑफिस में ये बात लाई थी, और हम दोनों जन बहुत हंसे थे कि दौलत खान तेरी बात सही है, कि 1 चड्डी की मैं लेने के लिए तुमको आरएसएस में भेजा था, आज पूरे गुजरात के धनी हो, तो मुझे उन्होंने वादा किया था कि तू रिटायर होकर आ जा, तुझे भी आधा गुजरात दूंगा. लेकिन मैं, मेरी फैमिली कंडीशन की वजह से, उन्होंने मुझे अहमदाबाद भाजपा के संगठन में भी लेटर दिया, लेकिन मैं फैमिली कंडीशन की वजह से मैं जा नहीं सका.
4: आज मोदी जी का जन्मदिन है, मगर 7 अक्टूबर को वो दिन है जिस दिन मोदी जी राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में 25 साल पूर्ण करेंगे. मित्रों, जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक किसी भी राजनेता ने 25 साल तक राज्य के मुखिया और देश के मुखिया के रूप में सेवा देने का रिकॉर्ड नहीं बनाया है. मोदी जी एक मेव नेता है जिन्होंने 25 साल तक लगातार

0: मैं ये सोच के उठती हूँ कि मैं आज कुछ ना कुछ एक नई चीज़ सीखूंगी। और ट्रेनिंग तो सब सेम करते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा करता है वही आगे निकलता है। तो अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करते हैं कि नहीं, आज और ज़्यादा ट्रेनिंग करनी है। लाइफ में भी और बॉक्सिंग में भी गिव अप नहीं करना। अगर हम हार मान जाएंगे तो ना तो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और ना ही बॉक्सिंग, क्या किसी भी गेम में नहीं आगे बढ़ सकते।
1: मेरा नाम मीनाक्षी हुड्डा है और मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। मैं बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैम्पियन बॉक्सर

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, जितिन प्रसाद जी, उपस्थित सभी इंडस्ट्री लीडर्स, सीईओज, डेलीगेट्स और वर्चुअली हमारे साथ सैकड़ों यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स के भारत के भविष्य ऐसे मेरे नौजवान साथियों, यहाँ उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में आए हुए उत्साहित नौजवानों, देवी और सज्जनों, सेमिकॉन इंडिया का ये पांचवा एडिशन हो रहा है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। विदेश से जो अतिथि आए हैं, मैं उनका भारत में विशेष स्वागत करता हूं। साथियों, आज विश्वकर्मा जयंती का दिवस भी है। मैं सभी देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारी परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन की शक्ति का प्रतीक माना गया है। और संयोग देखिए, आज से ही सेमिकॉन इंडिया की शुरुआत हो रही है। एक तरफ हमारी सदियों पुरानी निर्माण की परंपरा और दूसरी तरफ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और विजन, यही आत्मनिर्भर भारत की, विकसित भारत की हमारी प्रेरणा भी है। फ्रेंड्स, विकसित भारत बनाने के लिए हर देशवासी एक कमिटमेंट के साथ जुटा है। अगर हम बीते 15 दिनों की ही देखें, सिर्फ मैं 15 दिनों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, तो अंदाजा लगता है कि भारत किस दिशा में किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी सितंबर में, ठीक 10 दिन पहले, मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ। इसमें एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी के जरिए इंक्लूसिव फाइनेंस पर चर्चा हुई। इसी दौरान भारत में करीब 3000 किलोमीटर का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया। ये मैं सितंबर के 10 दिन की बात कर रहा हूं दोस्तों, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। इससे देश में फ्रेट मूवमेंट तेज होगा, लॉजिस्टिक बेहतर होगा और मैन्युफैक्चरिंग को भी नई ताकत मिलेगी। साथियों, इसी कालखंड में, इसी सितंबर में ही भारत की क्वार्टरली जीडीपी रिपोर्ट आई और इस चैलेंजिंग पीरियड में भी भारत ने 7.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। और इसी दरमियान जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है, अपग्रेड किया है और ये भी 3 दशक के बाद, करीब 35 साल के बाद हुआ है। यानी एक तरफ भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, दूसरी तरफ दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है। भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की। सबकी सहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे का एक और बड़ा प्रमाण है। साथियों, भारत की इन उपलब्धियों के बीच सेमिकॉन इंडिया का यह आयोजन और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इसका पहला एडिशन 2022 में हुआ था और तब से हम हर वर्ष मिलते हैं, लेकिन हर वर्ष हमारी चर्चा का विषय बदलता गया है। जब पहला एडिशन हुआ था तब हमने पॉलिसी पर बात की थी, इसके बाद के एडिशंस में बात आगे बढ़ी, अगले एडिशंस में हम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने लगे, फाइल पर साइंस से लेकर शिलान्यास की बातें होने लगी। पिछले साल हमने पायलट लाइंस और टेस्ट चीफ पर चर्चा शुरू की, कैसे भारत की यूनिट से पहले सैंपल निकलने शुरू हुए इस पर बात की, और इस साल हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब भारत के प्लांट से निकलकर हमारी चिप्स देश और दुनिया के कस्टमर तक पहुंचना शुरू हुई है, और अभी अभी मोहाली और सूरत में 2 और प्लांट्स में कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। मैं उनको भी बधाई देता हूं। फ्रेंड, किसी भी देश के लिए इतने कम समय में यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। ये सेक्टर ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री लगाई और काम पूरा हो गया। इसमें टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज बनाने में दशकों लगते हैं। दुनिया में जहां भी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बने हैं वहां ये पूरा इकोसिस्टम दशकों की मेहनत के बाद तैयार हुई है, लेकिन भारत ने आपके सहयोग से चिप डिजाइन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल इकोसिस्टम, टेस्टिंग कैपेबिलिटी हो, इन सभी पर एक साथ काम किया और सफलता हासिल करके दिखाई है। हमारी इस यात्रा में बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स, आप सभी इंडस्ट्री लीडर्स रहे हैं। आप भारत की सफलता के पिलर्स हैं, आप हमारी इस जर्नी के पार्टनर्स हैं। साथियों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा फेज शुरू कर दिया है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है। रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चलते हुए हमने इस सेक्टर में और भी रिफॉर्म्स किए हैं। अब इंटरनेशनल कंपनीज भी हमारे स्टार्टअप के साथ इंडियन डिजाइन कंपनीज और ओसीआई ओन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। यानी पॉलिसीज हो, फंड्स हो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो, आपके प्रोजेक्ट की सफलता के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हर कदम भारत सरकार उठा रही है। साथियों, हमारा प्रयास है कि भारत में फैबलेस कंपनीज की ग्रोथ हो और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का क्रिएशन भी भारत में ही हो। अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बनाने हो, सिलिकॉन फोटोनिक्स को इकोसिस्टम का हिस्सा बनाना हो, एआई एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये सब जरूरी है और इस दिशा में हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। इसके लिए जो फाउंडेशन चाहिए वो तैयारी हो चुकी है। सप्लाई चेन की मजबूती पर भी भारत का बहुत अधिक फोकस है। इसके लिए अनेक रिफॉर्म्स किए गए हैं। यहां जो इक्विपमेंट कंपनीज के लीडर्स हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आप भी इसका लाभ उठाने में पीछे मत रहिएगा। केमिकल, गैसेस और मटेरियल्स के लिए, उसके लीडर्स के लिए भी भारत में सुनहरा अवसर उनका इंतजार कर रहा है। हम चाहते हैं कि पूरा इकोसिस्टम एक साथ ग्रो करे। इसके लिए डिमांड पाइपलाइन भी तैयार है। अभी तक 12 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिल चुका है और नेक्स्ट फेज में ये दायरा और बढ़ेगा। साथियों, भारत में आप सभी के लिए एक और एडवांटेज यूथ का है, टैलेंटेड स्किल्ड मैनपावर का है। आज हमारे पास इंजीनियरिंग टैलेंट का बहुत बड़ा पूल है। भारत में हजारों इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और भारत हर साल लाखों इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है। एक बार मुझे अमेरिका के कंपनी के सज्जन मिलने आए थे, तो बोले हमारे यहां अगर इंजीनियर्स के लिए भर्ती करना चाहें, उनको बुलाएं, तो एक कमरे में आ जाए, इतने लोग आते हैं। और बोले हिंदुस्तान में बुलाए तो फुटबॉल का मैदान भी छोटा पड़ जाता है। ये ताकत है भारत की। और साथियों, चीप डिजाइनिंग के लिए तो बहुत बड़े पैमाने पर स्किलिंग का काम चल रहा है। अभी मुझे यहां आने से पहले यहीं पर कैंपस में इंडस्ट्री से जुड़े कुछ युवा साथियों से मैंने मुलाकात भी की है, सारे स्टूडेंट्स से। इन स्टूडेंट्स ने मुझे अपनी डिजाइन की गई चिप्स उपहार में दी है। हमारी सरकार 1,00,000 इंजीनियरिंग छात्रों को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए ट्रेन करने का लक्ष्य लेकर चल रही है और अभी आपको बताया गया इसमें से 70,000 से ज्यादा नौजवानों को ट्रेनिंग दी भी दे चुके हैं हम लोग। इतना बड़ा टैलेंट पूल आप सभी के लिए भी एक तरह से गोल्ड माइन से कम नहीं है। साथियों, सरकार के इन प्रयासों के बीच मैं आज युवाओं से भी आह्वान करूंगा, जो यंग टैलेंट्स भारत में रिसर्च कर रहे हैं वे आगे आएं, जो युवा विदेशों में रिसर्च कर रहे हैं वे भी भारत में एडवांस टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट से जुड़े। मैं इंडस्ट्री लीडर से आग्रह करता हूं, आप देश में R&D को लीड करें। इसमें इंडस्ट्री का भी फायदा है और भारत की युवा शक्ति को भी इससे ताकत मिलेगी। साथियों, आगे बढ़ती हुई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, आप सभी उनसे परिचित हैं। सालों तक आपकी इंडस्ट्री में लोग ट्रांजिस्टर की साइज की बात करते थे, जैसे जैसे ट्रांजिस्टर छोटे हुए कंप्यूटिंग उतनी ही फास्ट और एफिशिएंट होती गई। आज भी ये सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से इस इंडस्ट्री के सामने कुछ नए सवाल भी खड़े हुए हैं। बीते 2 वर्षों में ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट की ग्रोथ 20% से ज्यादा रही है और इस ग्रोथ में बहुत बड़ा AI से पैदा हुई डिमांड का है। यानी आज अगर आप AI पर काम कर रहे हैं तो चुनौतियां सिर्फ ये नहीं है कि चिप के अंदर क्या है, बल्कि चुनौती ये भी है कि इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मेमोरी को प्रोसेसर के और करीब लगाना हो, कई सारी चिप्स को इस तरह जोड़ना हो कि वे मिलकर एक ही सिस्टम की तरह काम करें, बिना किसी डिले के बहुत बड़ी मात्रा में डेटा यहां से वहां पहुंचाना हो, हीट और पावर को मैनेज करना हो, ऐसी अनेक चुनौतियां सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने है। इन चुनौतियों के बीच दुनिया को मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई और भरोसेमंद, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, नई और भरोसेमंद लोकेशंस की भी जरूरत सबसे ज्यादा हो रही है। और भारत, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारत इसके लिए खुद को लगातार तैयार कर रहा है। साथियों, आज की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने एक और बड़ा विषय एनर्जी सिक्योरिटी का भी है। AI के लिए जो चिप बन रही हैं, उनका इस्तेमाल AI डेटा सेंटर्स में हो रहा है। इन डेटा सेंटर्स में हजारों हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर एक साथ काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे जैसे एआई का विस्तार होगा, कंप्यूटिंग पावर की जरूरत भी उसी गति से बढ़ेगी, और कंप्यूटिंग पावर जितनी बढ़ेगी, बिजली की जरूरत भी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। इसलिए पावर सेक्टर में निवेश भी बहुत जरूरी है। हमारे प्लांट जहां है वहां पर समय पर बिजली मिले, जरूरत के समय जरूरत की मात्रा में मिले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत आज पावर सेक्टर में भी बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। बीते दशक में हमारी इंस्टॉल सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 2 गीगावाट से बढ़कर 160 गीगावाट से ज्यादा हो गई है, 2 से 160। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला गया है। हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर भी काम कर रहे हैं। बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। फ्रेंड्स, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। कुछ वर्ष पहले ही हमारे संविधान को 75 साल हुए हैं। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है। और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एस्पिरेंस आपके सामने है और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। एक बार फिर आप सभी को इस आयोजन के लिए मेरी ढेरों शुभकामनाएं हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: India is a semiconductor powerhouse is what the Prime Minister has just said as he opened the SEMICON India 2026 in New Delhi, bringing together semiconductor companies, policy makers, investors, researchers and startups as India seeks to expand its presence across an increasingly important technology supply chain. The 5th edition of the industry gathering is being held at Yashabhoomi and runs through September 19th. And that's Prime Minister receiving a standing ovation after he spoke there on the event, underscoring the importance of semiconductors, also stating that India is a semiconductor powerhouse. He was addressing those policy makers and industrialists sitting there at Yashobhoomi. Addressing the event, the Prime Minister stated that India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly. It is opening new opportunities for innovation, investment and growth. He also mentioned that it is opening new opportunities for innovation, investment at this point. More than 600 exhibitors are taking part, including about 300 international companies. And this is at a massive ground with many pavilions and 12 representing Indian states there. The conference agenda covers artificial intelligence, semiconductor manufacturing, advanced packaging, chip design, materials and equipment, supply chain resilience, research and development and workforce development. This at a time when India has made it clear about its ambitions on semiconductors.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

मैं ये सोच के उठती हूँ कि मैं आज कुछ ना कुछ एक नई चीज़ सीखूंगी। और ट्रेनिंग तो सब सेम करते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा करता है वही आगे निकलता है। तो अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करते हैं कि नहीं, आज और ज़्यादा ट्रेनिंग करनी है। लाइफ में भी और बॉक्सिंग में भी

0: नहीं करना, अगर हम हार मान जाएंगे तो ना तो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और ना ही बॉक्सिंग क्या किसी भी गेम में नहीं आगे बढ़ सकते।
1: मेरा नाम मीनाक्षी हुड्डा है और मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। मैं बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर।

0: मेरा नाम सिमू है और मैं 23 इयर्स की हूँ और मैं असम से बिलोंग करती हूँ, बट मैं दिल्ली के थ्रू खेलती हूँ। इधर आ, इधर आ। हेलो, कहाँ से आई तू?
1: हेलो सबको,
0: हैप्पी बर्थडे।
1: हैप्पी बर्थडे रिहाना,
0: हैप्पी बर्थडे।
2: हाथ मिला, थैंक यू।
0: चॉकलेट दे,
1: चॉकलेट दो।
3: चॉकलेट,
1: चॉकलेट का है तुम्हारा।
4: हेलो,
0: पूरा रियलिटी खोल देती है ये।
1: क्या?
0: मैं हाथ से नहीं खाऊँ, हाथ से खाऊंगे। इस वीडियो में हमारा पोहा आएगा अभी।
5: देखो बत्तख पानी में तैर रही है, इनको कितना मजा आ रहा है।
6: हेलो हेलो,
5: मैंने 2013 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी इसी स्टेडियम से, और मैं यहाँ से यहाँ पे तब से ही ट्रेनिंग कर रही हूँ। रोहतक से लिवरपूल का सफ़र काफ़ी टफ रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन जो मेरे बेसिक कोच हैं विजय हुडा, उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे को मोटिवेट भी किया। स्टार्टिंग में तो मतलब ये तो है नहीं कि प्लेयर हर बार जीतता ही है, हारता भी है, तो हारने के बाद जो साथ देता है वो एक कोच ही या फिर फैमिली वाले ही होते हैं। बाहर वाले तो बस बातें बना देते हैं कि हार गई है, लेकिन एक कोच को ही पता होता है कि उसने कितनी ट्रेनिंग की है खिलाड़ी ने और कितना मतलब स्ट्रगल किया है उसने। अब सबको मेरी मतलब कि जीत का तो पता है कि मैं लिवरपूल में मैंने मेडल जीता, लेकिन उसके पीछे का किसी को नहीं पता कि मैंने कितनी मेहनत की, कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग की और मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना किया। तो बहुत टफ था,

एक छोटे से गांव रुड़की गांव से हूँ, तो गांव में तो लड़कियों का यही रहता है कि उसकी जल्दी से शादी कर दें या फिर घर का काम सिखा दें ऐसा ही। लेकिन जैसे जैसे हमारे मेडल आने स्टार्ट हुए बॉक्सिंग में या फिर किसी भी गेम में, तो काफ़ी सपोर्ट करता है हमारा पूरा गांव ही सपोर्ट करता है।

0: अगर हम स्ट्रगल सोच के हम रह जाएंगे ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम बोलते कि यार मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे दिखता नहीं है, मैं लड़की हूँ, मुझे क्या करूँगे। लोग काफ़ी पेरेंट्स ये सोचता है कि मेरे बेटी ब्लाइंड है, उसको मैं हॉस्टल नहीं उनको मैं हॉस्टल नहीं भेजूँगी, क्या वो क्या कर लेगी जाके भी, उसको वैसे भी शादी करके भेजना है। लेकिन ये जो सोच है ना, ये सोच कभी एक पेरेंट्स को नहीं रखना चाहिए।
1: जल्दी धो,
0: बच्चों को दे दो। नहीं नहीं, मेरा मैं जब 5 साल की थी तब से मैंने खाना बनाना भी शुरू किया है, मैं सब कुछ बना लेती हूँ।
1: मेरे पापा ऑटो ड्राइवर हैं और मम्मी हाउस वाइफ हैं और हम 4 बहन भाई हैं। और एक मतलब कि प्लेयर को निकालना, प्लेयर की डाइट भी और वैसे भी इक्विपमेंट के भी बहुत सारे पैसे लगते हैं उन सारी चीज़ों में। तो स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई उनको। मैंने फर्स्ट नेशनल 2016 में खेली थी और मेरा उसमें गोल्ड मेडल आया था। फिर उसके बाद और ज़्यादा मतलब कि घर वालों का भी थोड़ा और ज़्यादा साथ मिला। बॉक्सिंग में जैसे 10 वेट कैटेगरी है गर्ल्स में, बॉयज़ में। मैं 48 में खेलती हूँ, फर्स्ट वेट में खेलती हूँ मैं।

जब मैं पैदा नहीं हुई थी 2001 में, तभी जब मैं मम्मी की गोख में थी, तभी 7 मंथ के, तब भी पापा छोड़ के चला गया, क्योंकि उसको लगा है कि मेरा भैया भी जो है वो भी डेफेंडा में ब्लाइंड है, ना सुन पाता है, तो उसके लिए उसको लगा कि मेरा दूसरा बच्चा भी ऐसा होगा, तो ये सोच के वो चला गया। तो उसके बाद मैं पैदा होने के बाद जब मैं 1 साल की थी, तब वो लेने आया था, पर मम्मी ने दिया नहीं, क्योंकि जब मुश्किल के वक्त में वो साथ नहीं दिया। तो अभी मैंने 1 साल उसको बड़ा कर दिया है, और अभी तो मैं अगर 1 साल में कर सकती हूँ, तो मैं लगभग और भी साल में कर पाऊँगी बोल के ये सोच के मम्मी ने बोला मैं अपना बच्चे को नहीं दूँगी बोल के बोल दिया। तभी मम्मी ने काम करना शुरू किया, दूसरे के घर में खाना बनाना, ऐसे ही हम लोग को बड़ा किया, मतलब इतना एजुकेशन भी हेल्प किया है, हर चीज़ में हम लोग को हेल्प किया है।

0: बचपन से तो इसने खेल स्टार्ट कर दिया था छठी सातवीं क्लास तक। और बच्चे जाते थे पड़ोस से, भाई मैं भी खेलन जाऊंगी। स्टेडियम बना था यहाँ गांव में, तो सभी बच्चे खेलन जाते हैं। बोला मम्मी मैं भी जाऊंगी, मैं भाई जाओ। फिर इसने देखा कि मैं तो बॉक्सिंग खेलूंगी, मुझे पसंद है खेलना, कैसे बॉक्सिंग खेलते हैं। तो भाई बच्चे देखे दे ऐसे खेलते हैं, तो भाई जब मैंने पता चला कि पापा तो पहले तो कुछ नहीं कहते, बाद में मना करने लग गए थे कि भाई ऐसे बच्चे को नहीं खिलाते, और बोल देते कहीं चोट लग जाएगी आँख नाक में। फिर ये बोले नहीं मैंने तो यही गेम करना है तो करना। फिर मैं चलो भाई कर ले।
1: I just passed down my 10th standard and I was not able to tell to my parents that I am building this kind of venture, because if I would tell my parents, they will definitely tell no, you should not do this, because you should focus on your education first, then after completing all the education you focus on whatever you want to be. But I was so convinced from inside that this is a problem, if I wouldn't solve now it could be impacting many lives across the country.
2: ये इंडियन ड्रेस है, प्लेइंग ड्रेस, ड्रीम होता है हर किसी को, नहीं मिलता ये पहनने के लिए, लेकिन मुझे मिला है पहनने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर कोई लड़ता है इसको पहनने के लिए, और हर किसी का किस्मत नहीं होता है, लेकिन मेरे किस्मत ने मेरा साथ दिया मुझे लगता है। मेरा जर्सी नंबर 1 है। ठीक है सर, बाय
3: बाय
2: बाय बाय बाय
3: बाय,
2: थैंक यू। यहाँ से लेफ्ट, भैया बस नंबर 78 आने से बता देना, 75 और
4: 78,
2: हाँ मोती नगर। कभी कभी ऐसा होता है कि अनसुना कर देते हैं लोग, लेकिन मैं सोचती हूँ तब मुझे फीलिंग्स आती है, काश मुझे दिखता तो किसी से पूछना नहीं पड़ता। असम से दिल्ली आना मेरा एजुकेशन की पर्पस से आना हुआ है 2019 में। क्रिकेट खेलना 2022 में मैंने शुरू किया। व्हेन आई स्टार्टेड टू प्ले, लाइक नो वन वर सपोर्टिंग मी, एवरीवन वाज टेलिंग बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ ब्लाइंड, हाउ विल यू एबल टू प्ले, बट दैट आई शोन इनटू एक्शन।

0: if our Indian youth or Gen Z, so-called, what we say, our Indian strength is our youth, first point, because we are in number, we are the biggest youth population of the world. If you see a decade back, China was having on the position one for youth population. But China have made the youth not as a liability, but as an asset with a right skills at right point. If our Indian youth adapt right skills at right point, this is the right time. I believe humko US banne se nahi, humko India banne se koi nahi rok sakta.
1: अभी तक भी लोग जानते नहीं है ब्लाइंड क्रिकेट क्या हुआ है. वर्ल्ड कप जीतने के बाद थोड़ा सा फेमस हुआ है कि हाँ, मतलब वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट भी होता है, लड़कियाँ भी खेलते हैं, ऐसा अभी तक मतलब लोगों को पता चला है. इतना उससे पहले किसी को पता नहीं होता था कि ब्लाइंड क्रिकेट भी है. हाँ, बॉयज़ के लिए है, लेकिन गर्ल्स के लिए तो नहीं है कुछ भी. लेकिन ये वर्ल्ड कप ने हर चीज़ पता कर दिया लोगों को, क्या है नहीं है.
2: मतलब सोचती थी मैं कि लेकिन मेरे को ये नहीं था कि मैं शायद जीत पाऊँगी. मेरे को ये था कि पता नहीं कब मैं भी जीतूँगी. तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था जब मैं लिवरपूल में जीती. बहुत मतलब इमोशनल हो गई थी मैं काफ़ी. कुछ समझ नहीं आ रहा था रिंग पे कि मैं मतलब कि मेरा हाथ उठा तो मेरे को मैं एकदम ब्लैंक हो गई थी कि क्या हो गया, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं. कुछ सेकंड के लिए तो फिर थोड़ा नॉर्मल हुई फिर.

मेरे को और ज़्यादा ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, और इस वेट में भी रहने के लिए मेरे को और ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार गोल्ड आना तो आसान है लेकिन उसको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल रहता है।

0: चलो चलते हैं फिर इवनिंग ट्रेनिंग पे।
1: Barakhamba Modern School, Delhi. As I am from Delhi team, all Saturday, Sunday I come for practice. Because of this, I am winning the World Cup.
0: अब हम स्टेडियम पहुंच चुके हैं और आज की ट्रेनिंग करेंगे अब थोड़ी देर में स्टार्ट।
1: दो ही चीज़ है, फोकस करना है और अपना मन में एक इशारा रखना है कि अच्छा चलो अभी इसने बॉल छोड़ दिया तो अभी आने वाला है। सो ये दो ही चीज़ हम लोग को आगे बढ़ाते हैं। यू कैन सी द बॉल अगेन, यू कैन हियर द साउंड ऑल्सो। This ball is the main thing which, through which we play. First, we need to focus on the sound. When the bowler says that ready bat, that means I'm ready. Like, so when the bowler says play, at the time play means the ball is relieved. Ball जब छोड़ देते हैं ना तो हम लोग को at least हम गिनती करते हैं, एक गिनती करते हैं और आवाज़ में आवाज़ मतलब ball की आवाज़ हम सुनते हैं, focus करते हैं।
2: विकसित भारत विच अवर मोदी जी इज प्लानिंग 2047 इज समथिंग विच विल टेक अवर इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल।
1: व्हेन आई जॉइन फर्स्ट टाइम मुझे थोड़ा प्रेशर लगा था कि यार मैं कैसे खेलूंगी, हाउ विल आई प्ले यार, इट्स सो टफ। व्हेन आई सो दैट girls are playing, then I just feel myself that why I can't play, I also can play. If they are able to play, then I also.
0: हार जीत तो चलती रहती है और एक अगर मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन जीत जरूर मिलेगी।

0: नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
1: आज जब दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है।
2: He's a very smart man and a great friend of mine, actually, a great leader.
3: With Modi, he's great. Prime Minister, he's great.
4: Prime Minister Modi, true friend of Australia and a very dear friend of mine.
5: Dear Prime Minister, I want to thank you so much for your friendship. Hans loves you.

0: I think you've got support from almost everyone. Thank you so much for coming here. All the best.
1: Thank you.
2: Thank you.
1: Thank you.
0: Of course, please. Let's get our next innovator on the stage. Please welcome Sambalpur, Odisha, se Space Fields Private Limited ke innovator Apurva.
3: Namaskar, sir.
0: Hi, Apurva. Kaise hain aap?
3: All well, sir.
0: Welcome to Vande Bharat.
3: Thank you so much.
0: Ready with the pitch?
3: Sure.
0: Mentors are right there. And your time to shine starts now.
3: Okay. Namaskar, mentors. मेरा नाम है अपूर्वा मासुक. आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ स्पेस फील्ड्स. मेंटर्स, आपके फोन्स में जब बैटरी जल्दी ड्रेन होने लगती है या स्क्रीन पे स्क्रैचेस हो जाते हैं, तो हम ब्रांड न्यू स्मार्टफोन नहीं खरीदते हैं. हम उसकी बैटरी को रिप्लेस करके या नया डिस्प्ले लगा के वो नई जैसी हो जाती. कुछ ऐसा ही करती हैं हमारे डिफेंस फोर्सेस उनके रॉकेट्स और मिसाइल्स के साथ. कोई भी रॉकेट या मिसाइल कितना दूर जाएगा यानी कि रेंज, कितना तेज़ी से जाएगा यानी कि स्पीड, कितना वेट कैरी कर पाएगा यानी कि पेलोड, ये सब कुछ डिपेंड करता है उनकी उसकी फ्यूल पे. ये फ्यूल को हम प्रोपेलेंट या प्रोपल्शन कहते हैं. ये प्रोपेलेंट सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि दिवाली के आतिशबाजियों में यूज़ होने वाला बारूद. दिवाली के पटाखे जब आप एक दो साल यूज़ ना करो तो वो ख़राब हो जाती हैं. कुछ उसी तरह ये रॉकेट्स और मिसाइल्स अगर 10-15 साल तक यूज़ ना हो तो उसकी प्रोपेलेंट एक्सपायर हो जाती है. नतीजा, पूरी मिसाइल बेकार. भारत में आज कई लाखों करोड़ों रुपए के ऐसे रॉकेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स एंड आर्मामेंट हैं जो ये सॉलिड प्रोपेलेंट्स पे निर्भर हैं. एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न दैट इंडिया इज़ अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर्स इन दिस फील्ड. बट ये सब स्टॉक में रखना भी बहुत ज़रूरी है फॉर नेशनल सिक्योरिटी रीजंस. पर जब सालों पुरानी खरीदी हुई डिफेंस स्टॉकपाइल की प्रोपेलेंट्स एक्सपायर कर जाए तो टैक्स पेयर्स के अरबों रुपये दांव पर लग जाते हैं. टैक्स पेयर्स के इन्हीं पैसों को बचाने के लिए और भारत की टेक्नोलॉजिकल सॉवरेंटी को बूस्ट करने के लिए हमने शुरुआत की स्पेस फील्ड्स. स्पेस फील्ड्स में हम कई ऐसे नए सॉलिड प्रोपेलेंट्स पे आरएनडी करते हैं जो एग्जिस्टिंग रॉकेट या मिसाइल की एक्सपायर्ड प्रोपेलेंट को रिप्लेस करके देश की डिफेंस इन्वेंट्री में नई जान डाल देती है. हमारे प्रोपेलेंट से मिसाइल्स की रेंज और स्पीड बरकरार रहती है, इनफैक्ट अपग्रेड भी होती है. पुराना स्टॉक दोबारा यूजेबल होता है और देश और देशवासियों के अरबों रुपये की बचत भी होती है. As a young company, we are 4 years old. हमने काफ़ी progress इस direction में किया है and armed forces का भरोसा भी हासिल किया है. आज स्पेस फील्ड्स के पास 50+ membered R&D team, 30+ patents, 15+ defense and aerospace customers and 45,000 square feet R&D facility भी है. हमारा vision है कि हम अपने innovation से भारत के defense assets को truly indigenous, sovereign and sustainable बनाएं. ओडिशा के छोटे से शहर से शुरू हुआ ये सफ़र आज देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत और आत्मनिर्भर करने का संकल्प बन चुका है. एज वी प्रोग्रेस ऑन दिस चैलेंजिंग एट क्रूशियल मिशन, वी आस्क फॉर योर सपोर्ट एंड पार्टनरशिप एंड अ फंडिंग ऑफ 8 crores. थैंक यू सो मच.
4: तो अपूर्वा, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेट्स ऑन योर जर्नी. एंड इन फैक्ट वी सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टार्टअप्स इन यू नो इन स्पेस डिफेंस एंड यू हैव चोजन अ वेरी यूनिक यू नो वेरी फोकस्ड यूनिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट व्हिच इज वेरी you know, as we all know, like it's very in need of the hour for the whether it's the forces or like all the customers you serve. So I'll ask a technical question and explain your technology. Matlab, what is different from a regular, you know, solid propellants or regular rockets, and also how, on a global scale, how do they compare?
3: जैसे fuel में आसान भाषा में बोले mileage, तो कितना देती है गाड़ी? तो कुछ उसका comparable parameter propellant में specific impulse, which is ISP. तो कोई भी rocket का डिज़ाइन अराउंड ISP होता है. तो हमारे प्रोपेलेंट से 20-30% इंक्रीज इन बैलिस्टिक परफॉर्मेंस या ISP मिलती है. यूजुअली हम कस्टमर बैकवर्ड्स हैं, तो जैसे कस्टमर्स को रिक्वायर्ड होती है हम उस तरह से प्रोपेलेंट केमिस्ट्री खुद की डिज़ाइन करते हैं. कई बार जैसे डिफेंस में रिक्वायर्ड होती है स्मोकलेस प्रोपेलेंट, कि कोई ट्रेल ना हो प्रोपेलेंट पे, सो दैट IR ट्रैकिंग एटसेट्रा कैन नॉट बी डन. तो दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव डेवलप्ड. तो करेंटली हमारा मेन कोर कॉम्पिटेंसी है कि हम एनर्जेटिक्स में या प्रोपेलेंट केमिस्ट्री में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं एंड काफ़ी R&D करते हैं. एंड देर इज़ नो कंपेरेबल एस्टैब्लिशमेंट इन द कंट्री दैट डज इट.
4: अमेजिंग, अमेजिंग. व्हाट काइंड ऑफ यू नो मेंटरशिप और व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू थिंक लाइक आई कैन प्रोवाइड फॉर स्पेस फील्ड्स?
3: 2020 व्हेन आई वाज ग्रेजुएटिंग, ISRO साइंड एन MOU विथ आवर इंस्टीट्यूट to fund the project with 50 lakhs in grants. That time, Dr. K. Sivan, he was the chairman. And the same month, two, three things happened. May 2020, I remember, you raised a massive Series A, $11 million. And space privatization followed quickly. So I think those two, three things, it was like a convergence. And when I was graduating, I was, I have to do this. So that has been my journey. So definitely you are someone who has been there, done that in this field. Now we are going in our early growth phase. And India, mein jaise kehte hain ki risk capital, especially for growth stages, is very, very difficult to mobilize. So I really like your support in that.
4: Absolutely, absolutely. Like I always say, like, you know, raising capital in our sector is like rocket science. And then, you know, happy, really happy to help out. And also, like, you know, if, you know, you talked about policy, you know, regulation challenges, you know, anything you think, you know, which you want to take it to the center level, you know, to resolve it, let me know. Definitely happy to, you know, work with you on unblocking those bottlenecks and, you know, see how we can work together on that.
3: Thank you so much, sir. Very generous of you.
1: I think I really like the focus that you have on silver bullet. Hey, I want this. I want to save the cost for defense and finding one that niche will actually help you scale faster, in my opinion.
3: So this is a field where there is no other startup competitor. So it's a field that is largely occupied by legacy incumbents. And we are the only startup in this field. Very recently, we have secured 121 acres in Andhra Pradesh in Anantapur, where we plan to set up our own propellant manufacturing plant and scale up the production capacity to meet the armed forces requirements.
2: But great work, and I would like to give you the one thing.
5: Fabulous.

0: स्पीच।
1: और आज वंदे भारतम के मंच पर आए कुछ ऐसे इनोवेटर्स जो टेक्नोलॉजी के जरिए भारत का फ्यूचर लिखना चाहते हैं। गुरुग्राम से ड्रोनवर्स, जो इंडिजीनियस ड्रोन और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी से भारत की सुरक्षा को मजबूत बना रहा है। इंदौर से इलेक्ट्रिका एनर्जी, जो एआई के जरिए बैटरीज को स्मार्टर और सेफर बना रहा है। ग्रेटर नोएडा से वोल्टवर्क्स, जो इंडिजीनियस ईवी टेक्नोलॉजी के साथ भारत के इलेक्ट्रिक फ्यूचर को पावर दे रहा है। मोरबी गुजरात से रन मुक्ति ग्रिड टेक्नोलॉजीज, जो भारत के पावर ग्रिड्स को सिक्योर बना रहा है। और नोएडा से इनक्रेडिबल डिवाइसेस, जो इनोवेटिव मेडटेक के जरिए हेल्थ केयर को और अफोर्डेबल बना रहा है।
2: अब आप हमारे इनोवेटर्स के फुल पिचेस हमारे अनप्लग्ड एपिसोड्स में देख सकते हैं।
3: हमारे इनोवेटर्स ने दिखा दिया कि इनोवेशंस के लिए हमेशा हाईटेक फॉरेन लैब की जरूरत नहीं होती। कभी कभी असली सॉल्यूशंस तो हमारे देश की मिट्टी और ग्रास रूट की तकलीफों से भी मिल जाते हैं। हमारे मेंटोर्स के सारे स्कोर्स अब हमारे वंदे भारतम वॉल्ट में जा चुके हैं। इस वॉल्ट में सिर्फ स्कोर्स और नंबर्स नहीं है दोस्तों, इसमें है भारत के कोने कोने से आए सबसे बेहतरीन इनोवेटर्स की उम्मीद और सपने। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने सारे इनोवेटर्स में से किसे मिलेगा कैश प्राइज और खुद गौतम अदानी जी से मिलने का मौका, जल्दी पता चल जाएगा। आज वंदे भारतम के इस कारवां से आप भी जुड़ गए हैं। अगर किसी इनोवेटर के आइडिया ने आपको इम्प्रेस किया है तो आप उनके लिए वोट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट @vandebharatam.org और बाय स्कैनिंग द QR कोड ऑन योर स्क्रीन। देखिए वंदे भारतम के सारे एपिसोड्स ऑन NDTV इंडिया, NDTV 24/7, NDTV प्रॉफिट और NDTV के डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं भारत के नए कल में।

0: anywhere else. To the American people, thank you for standing with Ukraine and recognizing that Ukraine's fight is our fight. It is not just their freedom and independence, it's ours. And if Putin is not stopped, he will be going against Poland, Moldova, Estonia, Finland, Sweden. And America will have our sons and daughters on the ground.
1: The bill passed by a vote of 262 to 159. And I want to thank my good friend Steny Hoyer, the lead Democrat on the bill, for his good work and excellent performance on the floor. This bill will cripple Russia's war machine and finally bring Putin to the negotiating table. It will ensure America's adversaries, not only Russia, but also China and Iran, suffer for their coordinated campaign of aggression. Lindsey understood these threats. He had the guts to stand up and confront them, no matter what the political cost was and where the winds were blowing. He understood that this is a moral issue that requires moral courage.
2: Moving on to some political stories now. The UPI fee controversy is now turning into a full-blown political showdown, with the leader of opposition and Congress MP Rahul Gandhi demanding a complete rollback of what he calls the UPI tax. He has accused the government, the center, of surrendering to US pressure. Meanwhile, Congress has made big claims on Parliament Standing Committee on Finance. Congress MPs have said they've claimed that the Parliament Standing Committee did not discuss the UPI tax proposal. They also claim that the Department of Finance did not have any specific proposal on UPI tax when they met the members of the Finance Committee. But as per government sources, the government is not really considering any rollback of this. And the controversy has also reached the Supreme Court now, with a petition challenging the new UPI charges being filed.
3: Indraji was once asked whether she leans left or right. And her response was, "I don't lean left, I don't lean right, I stand straight." Modiji has a completely different concept. He's neither left nor right. He has decided to lie down straight and prostrate himself in front of Donald Trump. He's put a tax on every single Indian person by taxing UPI and giving huge amount of money to the United States. Modi ji, please stop lying down in front of the United States. Have a spine, khade ho jaiye, aur UPI tax ko wapis lijiye.
4: जब यूपीआई की शुरुआत हुई थी तो बहुत लोगों को लग रहा था कि यह इनिशिएटिव किसी भी सूरत में सफल नहीं होने पाएगा, और बहुत लोग यह पूछ रहे थे इससे गरीब को कैसे फायदा पहुंचेगा इस यूपीआई से। पिछले महीने ही यूपीआई को लागू किए 10 साल पूरे हुए हैं। सिर्फ अगस्त महीने में ही यूपीआई से 23.66 बिलियन ट्रांजेक्शन हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रन ने यूपीआई की प्रशंसा करते हुए कहा कि यूपीआई केवल एक टेक स्टोरी नहीं है, यह एक सिविलाइजेशनल स्टोरी है।
5: आप लोग ये यूपीआई पर एमडीआर लगाने का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये जानकारी आई है कि संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति में जब इसको लेकर सिफारिश की गई तो उस समिति में जो कांग्रेस के सांसद हैं उन्होंने कोई असहमति व्यक्त नहीं की। इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कांग्रेस
6: मोबाइल है,
5: इस पर क्या सफाई
6: है? जेब में मोबाइल है
5: जी, मैंने कांग्रेस सांसदों का
6: दोनों का ट्वीट देख ली, एक्स पे पोस्ट देख ली, फिर भी पूछ रहे हो।
5: लेकिन वो रिपोर्ट के पन्ने भी तो कुछ कहते हैं,
6: पन्ने छोड़िए, अगर सांसद झूठ बोल रहे हैं हमारे तो बोलिए, उनको चुनौती दे रहे हैं हम। चलिए,
5: इस पर एक बयान दे दीजिए सर।
6: बयान दे दिया सदस्यों ने, दिया सदस्यों ने। मनीष तिवारी जी का बयान देखा, गौरव गोगोई जी का बयान देखा, मैंने चिदम्बरम साहब का नहीं देखा, अगर आया या नहीं मुझे नहीं मालूम। फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो फिर तो हैप्पी बर्थडे मनाना ही पड़ेगा।
2: Well, with that, it's time for a short break. More news and updates on the other side.

0: countries, the BJP governments, and of course, the government here is celebrating Prime Minister Narendra Modi's birthday. 25 years of Prime Minister being in the governance. First as the Chief Minister of Gujarat, then of course the Prime Minister of India. That is going to be our top focus as many programs have been lined up across the country at this moment. We will go across to a few of those programs as well. Let's begin with our top story. Prime Minister Narendra Modi's 76th birthday is being celebrated as Seva Divas, where service initiatives and public events have been organized in BJP-ruled states and also by the government. Now, Prime Minister thanked everyone for the wishes on his birthday. He also said Ashirwad Ka Diya, which was launched by the Bharatiya Janata Party, is one such expression of affection that has deeply touched me. Meanwhile, Union Minister Home Minister Amit Shah flagged off a bike rally from Vadnagar in Gujarat to Varanasi in Uttar Pradesh. Vadnagar, of course, the place where Prime Minister Narendra Modi was born, and Varanasi is the constituency that he represents since 2014. Now, BJP National President Nitin Nabi inaugurated a blood donation camp at the party headquarters in the national capital. Meanwhile, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, Defence Minister Rajnath Singh, Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu, Union Minister Chirag Paswan, BJP State President and Minister of State Pankaj Chaudhary offered prayers at Kashi Vishwanath Temple. Delhi Chief Minister Rekha Gupta performed a yagya for Prime Minister's long, in fact, and a healthy age. BJP leaders offered prayers to celebrate Prime Minister's birthday across the country.
1: Pradhan Mantri Narendra Modi ka janma din hai aur is mauke par humse khas baat cheet karne ke liye maujood hai unke teacher HC Patel sir. Patel sir, kis tarike ke PM Modi school mein raha karte the, unse jodi hui kuch yaad hai agar jo aap saajha kar sake.
2: Main bola from June 65 to May 67 स्टैंडर्ड 10 एंड 11 दसवीं और ग्यारहवीं कक्षा दो साल तक उनको मैंने मैथ्स और साइंस गणित और विज्ञान पढ़ाया है. वो मैथमेटिक्स में वो प्रॉफिट लॉस का मैंने इलस्ट्रेशन दिया. वो समझते थे प्रॉफिट और लॉस 10% 20% हो सकता है. मैंने मलाया नहीं नरेंद्र भाई, प्रॉफिट और लॉस 300% भी हो सकता है, 400% भी प्रॉफिट हो सकता है.
1: वडनगर से निकलने के बाद क्या कभी आपको, पहले मैं ये पूछना चाहूँगी, क्या आपको लगा था कि कभी नरेंद्र मोदी सीएम बन पाएंगे, सीएम के बाद आप पीएम बन गए?
2: हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी या तो एके आडवाणी, मुझे पूरा पता है, वो दोनों में से एक की कृपा से वो सीएम हो गए. जब सीएम हुए उनकी सौगंध विधि हो गई, गवर्नर ने करवा दी, तो उस दफे मैं गांधीनगर गया था. ओ नरेंद्र भाई, ओ नरेंद्र भाई, वो तो सुनते नहीं, क्योंकि वो मॉब होता है ना, टोला भीड़ होती है, तो दौड़ते दौड़ते, तो मैं तो दौड़ नहीं सकता. बस वो डी एल पटेल दिन 10 रुपये डी एल पटेल हमारे देना में के कर्मचारी, वो 11वीं कक्षा में थी, वो 7वीं पढ़ते थे. ओ नरेंद्र भाई, वो एस सी पटेल आपको बुला रहे हैं. तो नरेंद्र भाई पीछे लौटे, वापस लौटे, दो चार स्टेप मुझे मेरे चरण स्पर्श किए, मैंने के हाथ में मैंने आशीर्वाद दिए, ये मुझे याद आता है.
1: पीएम मोदी को आप कब से जानते हैं?
3: हम बचपन से, यानी दोनों चार से हम साथ में स्कूल के अंदर, प्राइमरी स्कूल के अंदर जो आज प्रेरणा स्कूल बनी है, उसी के अंदर दोनों चार पाँच छः और सात तक हमने प्राइमरी एजुकेशन लिया.
1: मतलब आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ प्राइमरी स्कूलिंग से साथ में?
3: हाँ, हम प्राइमरी स्कूल से ही, दोनों चार से हम साथ में हैं, चार पाँच छः और सात तक प्राइमरी स्कूल जो आज प्रेरणा स्कूल बनी है, उसी के अंदर हमने साथ में एजुकेशन लिया. आरएसएस की फी दे के हम मेंबर बने, लेकिन मैं मुस्लिम होने के नाते 3 दिन के बाद मेरा रुपया वापस आया और मैं मेंबर न बन सका. लेकिन उस वक्त मोदी साहब ने मुझे बताया, जब तुझे नहीं बनाते तो मैं भी मेंबर नहीं बनता. लेकिन मैंने बोला कि भाई तेरे पास भी चड्डी पहनने को नहीं है, मेरे पास भी चड्डी पहनने को नहीं है. आरएसएस वाले अपनों को 2 चड्डी देते हैं 1 रुपये में, तो 2 चड्डी लेके आओ, 1 चड्डी मुझे देना. तो मोदी साहब बहुत

0: था से बचपन में, और जाके तुम बोलता है तो मैं सभ्य बन जाता हूँ, और उस दिन से वो सभ्य बन चुके हैं। और ये बात मैंने 2009 के अंदर जब सीएम थे तब मैंने गुजरात के अंदर उनकी ऑफिस में ये बात लाई थी, और हम दोनों जन बहुत हंसे थे कि दौलत खान तेरी बात सही है कि एक चड्डी की मैट लेने के लिए तुमको आरएस में भेजा था, आज पूरे गुजरात के धनी हो, तो मुझे उन्होंने वादा किया था कि तू रिटायर होकर आ जा, तुझे भी आधा गुजरात दूंगा। लेकिन मैं मेरी फैमिली कंडीशन की वजह से, उन्होंने मुझे अहमदाबाद भाजपा के संगठन में भी लेटर दिया, लेकिन मैं फैमिली कंडीशन की वजह से मैं जा नहीं सका।
1: Meanwhile, a special birthday greeting for Prime Minister Modi at the Semicon event. A warm message for the Prime Minister. Take a look.
2: वैसे जन्मदिन तो मनाता नहीं हूँ, लेकिन आज आपने मेरे जन्मदिन को चीप कर दिया।
3: सर एक बात
2: में
3: आपको बोलना
2: चाहिए। जी। अरे वाह, बाबा, ये तो आज मेरा नहीं, आज आप ही का बना। क्या नाम आपका? प्रियंका जी का जन्मदिन आज मनाया। आज दो जन्मदिन, एक विश्वकर्मा जी का है, विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं, और आप लोग जो काम करते हैं वो विश्वकर्मा का वाले का आधुनिक काम है, और प्रियंका जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दे देते हम लोग।
1: Chief ministers and minister in the cabinet of Prime Minister Narendra Modi have been in fact going out of their way to wish the Prime Minister. Take a look.
4: आज मोदी जी का जन्मदिन है, मगर 7 अक्टूबर को वो दिन है जिस दिन मोदी जी राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में 25 साल पूर्ण करेंगे। मित्रों, जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक किसी भी राजनेता ने 25 साल तक राज्य के मुखिया और देश के मुखिया के रूप में सेवा देने का रिकॉर्ड नहीं बनाया है। मोदी जी एकमेव नेता है जिन्होंने 25 साल तक लगातार जनादेश को प्राप्त करकर, हर चुनाव में विजय प्राप्त करकर, जनता के आशीर्वाद प्राप्त करकर ये काम किया है।
5: आज हमारे आधुनिक भारत के निर्माता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये जन्मदिन है। मैं सर्वप्रथम देश के प्रधान सेवक को उनके ये जन्मदिन पर बधाई देता हूँ, दीर्घायु होने की कामना करता हूँ, यशस्वी होने की कामना करता हूँ। साथ ही साथ आज उनके जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में हमारा जो अभियान चल रहा है सेवा संकल्प अभियान का, उस अभियान का शुरुआत आज हो रहा है। आज रक्तदान के माध्यम से देश भर में हजारों भाजपा कार्यकर्ता रक्तदान महादान के मंत्र से इस पूरे अभियान की शुरुआत कर रहे हैं।
6: आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। इस अवसर पर मैं स्वयं और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी और श्री चंद्रबाबू जी नायडू और श्री चिराग जी पासवान LJP के नेता और श्री पंकज जी चौधरी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग यहाँ पर पूजा अर्चन करने के लिए काशी विश्वनाथ का आए कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को वह दीर्घायु करें, वह आजीवन अस्वस्थ रहें, और साथ ही साथ भारत के विकसित भारत के लक्ष्य को ताकि प्राप्त किया जा सके।
7: सितंबर 17 माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, और अक्टूबर 7, 2001 के दिन वो मुख्यमंत्री जी का पद संभाले, तब से लेकर आज तक हर पद में चुने हुए एक पोजीशन में वो बैठकर सेवा कर रहे हैं इस देश का। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और हमारे सरकार NDA के द्वारा हर NDA पार्टनर के साथ रह करके हम इस पर्व को सितंबर 17 के से लेकर के अक्टूबर 7 तक कुछ न कुछ जनता के हित में कार्यक्रम सेवा के रूप में करने के लिए हम तैयार किए हैं।
8: मैं बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा से श्री विश्वकर्मा पंचायत मंदिर में भगवान विश्वकर्मा के पावन चरणों में नमन करते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस पावन जन्मदिन के अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से जन्मदिन की हृदय से बधाई देते हुए उनके स्वस्थ और

0: interest of the nation. Never in the history of India, one person has continued continuously for 25 years. That is a great achievement, and also we are all proud of him. India is proud of him. Under his, with his name, we have conducted puja. Kashi Vishwanath ji has given more strength for him to make India number one globally. That is going to happen. We are very happy. We are very proud to announce on this historic day, on this historic city.
1: देखिए आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, मैं मेरे प्रधानमंत्री को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे एक ऐसे कालखंड में केंद्रीय मंत्री की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी मिली जब नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जिन्होंने देश के हर वर्ग को साथ लेकर विकास की राह पर आगे लेकर जाने की सोच रखी। ऐसे में आज उनके जन्म दिवस पर उनकी कर्मभूमि बनारस में, काशी में मुझे उपस्थित होने का मौका मिला, मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
2: आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और हम सब यहाँ पर 108 कुंडिया हवन अभी हमने संपूर्ण किया है। बाबा श्याम खाटू वालों के चरणों में हमने प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु, स्वस्थ जीवन और देश सेवा में वो इसी तरीके से लगातार काम करते रहे, इसकी कामना की है। एक गाना भी लॉन्च करेंगे जो हमारे स्कूल के बच्चों ने बनाया है, और शाम को हर दिल्लीवासी अपनी मन से प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए एक शुभाशीष का दिया जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जलाएगा, आशीर्वाद का दिया प्रभु चरणों में, ये कामना करते हुए कि हमारे प्रधानमंत्री जी सदैव हमारे इस देश की सेवा करें और स्वस्थ जीवन और उनका समृद्ध भारत जो उनका सपना है उसको साकार करें।
3: क्या उनको करना चाहिए कि आज जो आज का दिन है यादगारी पल बन जाए, क्या अनाउंसमेंट करनी चाहिए?
4: कौन ना वो पीएम साहब क्या करें, मैं क्या, चलिए और कुछ नहीं तो जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड दे दे हमें, और क्या चाहिए हमें।
5: आज की ये सुबह ये बहुत खास है। आज हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत और हमारे मार्गदर्शक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। मैं हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन के हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं मैं देता हूं।
6: Massive programs are being celebrated across the country in the BJP rule state to celebrate the Prime Minister's birthday. I'm now being joined by Akhilesh Sharma, my senior colleague in Ujjain. Raman Rai is joining us from Patna. Diksha Bharadwaj is in Delhi. All across there have been, as you heard, the Delhi Chief Minister, this Deepotsav, Diya, there will be the lighting of these Diyas across many, many cities. And some of them are also in the race, Akhilesh, and let me come to you first, in a race to break the Guinness Book of World Records.
7: That's correct. In fact, Ankit, we know that the Guinness Book record right now is held by Ayodhya. At the time of Dev Diwali, there's a lot of diyas which are lit there on the banks of Saryu. Right now, I'm standing at the banks of Shipra, the holy river Shipra, in the holy city of Ujjain. And in the short while from now, BJP President Nitin Naveen will be coming here along with the Madhya Pradesh Chief Minister, Mr. Mohan Yadav. I just want to show you some pictures. The beautiful Ghat, Ram Ghat, I am standing right now here, and in the entire city I have seen there are diyas lined up everywhere in the streets, and as the Chief Minister says that he wants to break the record of Ayodhya to lit the maximum number of diyas. So this is Ashirwad ka diya to wish Prime Minister Narendra Modi a happy birthday and also a long and healthy life. This is what the wish is.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: गोल्ड रश ऑन द फील्ड
2: इंडियाज चैंपियंस आर रेडी
1: द बैटल्स एंड द ब्रेक थ्रूज फ्रॉम द अरीना टू द पोडियम
2: एशियन गेम्स 2026
1: गो फॉर ग्लोरी ओनली ऑन एनडीटीवी
0: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
3: नेविगेट मी टू द नेशनल आर्चरी क्लब व्हाट टाइम इज द मेडल सेरेमनी
4: द मेडल सेरेमनी बिगिंस एट 6:30 पीएम
5: Live Gen AI in the Kia Sorento. Thoughtful intelligence for the moments that matter.
6: Kia. Movement that inspires.
7: The next chapter of the NDTV Golf Pro-Am begins here. Bigger. Bolder. Teeing off across India. The course of champions. The conversation of leaders. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Season announcement.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: Ashutosh is on this television program and he still hasn't been picked up from the back, means that we're safe. We have diversity of opinion, which is fine.
1: Harshvardhan ji, Ashutosh keh rahe hain ki ye personality cult hai and this is not becoming of a democracy. Somebody who started as a swayamsevak, somebody who came from humble beginnings, this kind of celebration is not very becoming of him. But there's also the question of how here is somebody who came from a state, a regional leader as it were, and now he has managed to take his party to places where it had never existed before. Ab unki sarkar Tripura ke andar bhi hai, ab unki sarkar Paschim Bengal ke andar bhi hai. Kya wo sach mein wo jo mold tha of a regional leader break karke khud bhi mainstream ho gaye hain as a brand?
2: Padmaja, sabse pehle Bharat ke pradhanmantri ka janmdin shubh ho. और डेमोक्रेसी में भारत का प्रधानमंत्री मतलब जनप्रतिनिधि, सबका चुना हुआ, सबका नेता आशुतोष जी का भी, वो प्रधानमंत्री उसके जन्मदिन के शुभ होने का मतलब सबका दिन शुभ हो, देश का दिन शुभ हो। तो डेमोक्रेसी को हम ऐसे देखते हैं, अगर आज के दिन किसी के मन में ऐसे शब्द आ रहे हो प्रधानमंत्री के लिए, तो मुझे लगता है थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किस मानसिकता से कौन कैसे देखता है लोकतंत्र। अब एक तो मैं इस डिबेट से ही सहमत नहीं कि नेहरू जी या कौन प्रधानमंत्री। देखिए, इस देश ने डेमोक्रेसी में, भाई नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू जी थे, मोतीलाल नेहरू जी दबाव बनाकर गांधी जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा लेते हैं जवाहरलाल नेहरू को। तो अब नरेंद्र मोदी के पिताजी नहीं थे ऐसे कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ करा पाते या इस तरह से, वो प्रचारक थे, वो एक अपना जीवन जीते हुए गए। नरेंद्र मोदी नेशनल पार्टी के लीडर थे, उन्होंने जब गुजरात में उनको काम सौंपा गया तो एक गुजरात मॉडल क्रिएट कर दिया। कौन सा गुजरात मॉडल? जो साबरमती रिवर फ्रंट दिखाता है कि देश जो भारत की नदियों वाला देश है, वहां नदी किनारे सफाई, बैठने का स्थान होना चाहिए। जो कालूपुरा, भगवानपुरा में कच्ची शराब की भट्टियां जिस जगह पर जला करती थी, वहां शानदार साबरमती रिवर फ्रंट है, जहां रात से रात को गुजरते डर लगता था, वहां अब हिंदू मुसलमान सब, मुस्लिम महिलाएं ज्यादा होती हैं, वो सब आप शाम को जाकर देखिए तो मिलेगा। वो नरेंद्र मोदी जिसने कहा कि भाई हमारे राज्य में बच्चियां कम स्कूल जाती, अभियान चलाया। देश के कितने मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने वो अभियान चलाया होगा? और मुझे तो याद नहीं है कि प्रधानमंत्री के तौर पर भी, अब मैं किसी का नाम लूंगा तो अभी नेहरू सिंड्रोम से ग्रसित लोग परेशान हो सकते हैं, लेकिन कितने लोगों ने यह अभियान चलाया कि बच्चियां स्कूल नहीं पढ़ने जा रही, भारत स्वतंत्र हो गया, इसको अभियान चलाकर करो, तो वो रेशियो पहले ही सुधर गया होता। हमारे देश के अलग अलग हिस्से पिछड़ गए, पिछड़े जिले घोषित कर दिए, पहले उनको पिछड़ा जिला घोषित कर दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा भाई ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अब तो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स क्यों बात करते हैं, और उन्होंने कहा गुजरात से शुरू करते हैं। गुजरात में जितने पिछड़े इलाके हैं, कच्छ और भुज का इलाका, और जहां रणोत्सव होता है धोर्डो गांव, पूरी तरह से मुस्लिम आबादी है, हिंदू नहीं है वहां, मुस्लिम आबादी है, लेकिन उसको इतना संपन्न और समृद्ध बना दिया रणोत्सव बनाकर। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने कहा भाई हम वाइब्रेंट गुजरात, और मुझे याद है जब उन्होंने शुरू किया था ना, तो दिल्ली में पत्रकारों का इकोसिस्टम कहता था कि चलो देखते हैं, घूम टहल के आ जाते हैं, गुजरात सरकार बुला रही है, वहां तो कुछ होता नहीं, एमओयू वगैरह कुछ करते हैं। अब हर राज्य उसके पीछे पीछे चल रहा है। आप जरा मुझे सोच कर बताइए, कौन सा ऐसा नेता हुआ जिसने ऐसे इनिशिएटिव लिए जिसके पीछे हर लीडर फॉलो कर रहा है, हर राज्य का नेता फॉलो कर रहा है। और मैं ये मानता हूं कि नरेंद्र मोदी ने उस एस्पिरेशनल इंडिया को, एस्पिरेशन तो 15 अगस्त 1947 से थी, लेकिन एस्पिरेशनल इंडिया को वहां लाकर खड़ा किया। अब कुछ लोग परेशान होते हैं तो भाई हम हैं हजारों वर्षों पुरानी संगीत, हम देश कोई 15 अगस्त 1947 वाला भारत नहीं है, इंडिया डे भारत नहीं, ये भारत है और उसकी संस्कृति होगी तो काशी होगा, शिव भी होंगे, उसकी संस्कृति है तो राम भी है, अयोध्या भी होगा। और इसीलिए असली मुश्किल है कि ये जो मॉडल नरेंद्र मोदी ने डेवलप किया है, जो हमारे गर्व के साथ, हमारी संस्कृति के साथ, हमारे संस्कार के साथ, कहां सेमीकंडक्टर के मामले में भी दुनिया के मुकाबले खड़ा होने की ताकत देता है,
1: ओके एस्पिरेशनल मॉडल, यू मे नॉट अग्री विद द मैनर ऑफ सेलिब्रेशन आशुतोष, बट इज देयर एन एस्पिरेशनल मॉडल दैट ही हैज मेनस्ट्रीम?
2: एक लाइन में खत्म कर रहा हूं,
1: ठीक है, एक लाइन और देन आशुतोष,
2: एक लाइन जोड़ दूं। मैंने जो शुरू में कहा कि नेहरू जी से तुलना मत कीजिए, नेहरू जी बहुत बड़े व्यक्ति थे, बड़े पिता के व्यक्ति थे। हमारे यहाँ इलाहाबाद में जितना इलाहाबाद विश्वविद्यालय का परिसर है उससे बड़ा स्वराज भवन, आनंद भवन, इतने बड़े व्यक्ति थे, तो उनसे तुलना मत कीजिए। आपको तुलना करनी

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा,

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: drive in the Kia Sorento.
1: Kia. Movement that inspires.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

मैं जहां भी जाता हूं, मोदी नहीं जाता, हजारों साल की वेद से विवेकानंद की महान परंपरा को 140 करोड़ लोगों उनके सपनों को लेकर के, उनको आकांक्षाओं को लेकर के मैं निकलता हूं।

0: democracy or not. Because I remember when Mrs. Gandhi, there one person who said ki Ms. Indira is India and India is Indira, and till now he's quoted. Now this has become a kind of a cult. This is something which is bizarre in my opinion.
1: Okay.
0: That that schools are giving, being asked ki aap wo, aap unka wo kariye, colleges being asked, universities and everywhere something is happening on this. In a democracy, how this could be allowed? And why this should be allowed? And that is where my question is about the Suhail is saying that he doesn't need to hold a press conference. A prime minister is supposed to answer questions if he believes in democracy. It's not about that he is directly communicating. Even if you are directly communicating, the Trump hate media, but Trump is being questioned every day.
1: Okay, Suhail Seth, please respond to that. A personality cult, says Ashutosh.
2: Ashutosh, being a very erudite journalist, has always expressed himself in his polarity, saying that I think he's narcissistic, blah, blah, blah, blah, blah. I want to take you back to history, Padmaja. All strong leaders have a following which does things which makes them more loyal than the king themselves. It's not as if it has that leader's sanction. And let's go back into history. Nehru was venerated. MGR had temples built around him. So, to say a democracy is bereft of hero worship is incorrect. We have examples across the world. I mean, Churchill was a terrible prime minister for India, but Churchill is venerated in the United Kingdom. So I don't think we need to go there. I mean, for a lot of people, Lincoln was the unifier of America. And for a lot of people, he wasn't. The person who signed the Black Rights Movement, the Civil Rights Movement, is actually Lyndon B. Johnson. But it's John F. Kennedy who's venerated. The space mission went into space during Lyndon Johnson. But I don't want to give a history lesson to an erudite Ashutosh.
1: Because Harshvardhanji, I want to take forward the point that we were discussing earlier. I'll come back to you, sir, for just a second, because I really want to bring in Harshvardhanji for just a second. Okay, only 10 seconds, please.
0: I think the Suhail should remember there is a difference between veneration and the forced veneration. There is a difference between hero worship and the forced hero worship. There is a difference between hero worshipping at the cost of common man's pocket and from the government exchequer. I think we should make a distinction and we should think about it. Today, what we are celebrating is, Pradhanmantri Narendra Modi ko Ishwar lambi aayu de, hum unke janmadin par shubhkamnaen dete hain. But what is happening around, I don't think it's good for democracy.
1: Okay, Harshvardhan ji, ye personality cult hai and it is not healthy for a democracy.
2: Since he named me, the fact that an Ashutosh can say what he does and he has all the liberty to do so on NDTV proves that we are still a functional democracy. A, B, that it is not a movement where Ashutosh's voice, as robust as it is, will be snuffed out. There, to my mind, lies a sense of optimism. Fact that Ashutosh is on this television program and he still hasn't been picked up from the back means that we are safe. We have diversity of opinion, which is fine.
1: Harshvardhan ji, Ashutosh keh rahe hain ki ye personality cult hai and this is not becoming of a democracy. Somebody who started as a swayamsevak, somebody who came from humble beginnings, this kind of celebration is not very becoming of him. But there's also the question of how here is somebody who came from a state, a regional leader as it were, and now he has managed to take his party to places where it had never existed before. Ab unki sarkar Tripura ke andar bhi hai, ab unki sarkar Paschim Bengal ke andar bhi hai. Kya wo sach mein wo jo mold tha of a regional leader break karke khud bhi mainstream ho gaye hain as a brand?
3: पत्नीजा, सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री का जन्मदिन शुभ हो. और डेमोक्रेसी में भारत का प्रधानमंत्री मतलब जन प्रतिनिधि, सबका चुना हुआ, सबका नेता, आशुतोष जी का भी, वो प्रधानमंत्री, उसके जन्मदिन के शुभ होने का मतलब सबका दिन शुभ हो, देश का दिन शुभ हो. तो डेमोक्रेसी को हम ऐसे देखते हैं, अगर आज के दिन किसी के मन में ऐसे शब्द आ रहे हो प्रधानमंत्री के लिए, तो मुझे लगता है थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किस मानसिकता से कौन कैसे देखता है लोकतंत्र. अब एक तो मैं इस डिबेट से ही सहमत नहीं कि नेहरू जी या कौन प्रधानमंत्री, देखिए, इस देश ने डेमोक्रेसी में, भाई नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू जी थे, मोतीलाल नेहरू जी दबाव बनाकर गांधी जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा लेते हैं जवाहरलाल नेहरू को। तो अब नरेंद्र मोदी के पिताजी नहीं थे ऐसे कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ करा पाते या इस तरह से, वो प्रचारक थे, वो एक अपना जीवन जीते हुए गए। नरेंद्र मोदी नेशनल पार्टी के लीडर थे, उन्होंने जब गुजरात में उनको काम सौंपा गया तो एक गुजरात मॉडल क्रिएट कर दिया। कौन सा गुजरात मॉडल? जो साबरमती रिवर फ्रंट दिखाता है कि देश जो भारत की नदियों वाला देश है, वहां नदी किनारे सफाई बैठने का स्थान होना चाहिए। जो कालूपुरा भगवानपुरा में कच्ची शराब की भट्टियां जिस जगह पर जला करती थी, वहां शानदार साबरमती रिवर फ्रंट है, जहां रात से रात को गुजरते डर लगता था, वहां अब हिंदू मुसलमान सब, मुस्लिम महिलाएं ज्यादा होती हैं, वो सब आप शाम को जाकर देखिए तो मिलेगा। वो नरेंद्र मोदी जिसने कहा कि भाई हमारे राज्य में बच्चियां कम स्कूल जाती, अभियान चलाया। देश के कितने मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने वो अभियान चलाया होगा? और मुझे तो याद नहीं है कि प्रधानमंत्री के तौर पर भी, अब मैं किसी का नाम लूंगा तो अभी नेहरू सिंड्रोम से ग्रसित लोग परेशान हो सकते हैं, लेकिन कितने लोगों ने ये अभियान चलाया कि बच्चियां स्कूल नहीं पढ़ने जा रही हैं, भारत स्वतंत्र हो गया, इसको अभियान चलाकर करो, तो वो रेशियो पहले ही सुधर गया होता। हमारे देश के अलग अलग हिस्से पिछड़ गए, पिछड़े जिले घोषित कर दिए, पहले उनको पिछड़ा जिला घोषित कर दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा भाई ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अब तो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स क्यों बात करते हैं, और उन्होंने कहा गुजरात से शुरू करते हैं। गुजरात में जितने पिछड़े इलाके हैं, कच्छ और भुज का इलाका, और जहां रणोत्सव होता है धोर्डो गांव, पूरी तरह से मुस्लिम आबादी है, हिंदू नहीं है वहां, मुस्लिम आबादी है, लेकिन उसको इतना संपन्न और समृद्ध बना दिया रणोत्सव बनाकर। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने कहा भाई हम वाइब्रेंट गुजरात, और मुझे याद है जब उन्होंने शुरू किया था ना, तो दिल्ली में पत्रकारों का इकोसिस्टम कहता था कि चलो देखते हैं, घूम टहल के आ जाते हैं, गुजरात सरकार बुला रही है, वहां तो कुछ होता नहीं, एमओयू वगैरह कुछ करते हैं। अब हर राज्य उसके पीछे पीछे चल रहा है। आप जरा मुझे सोच कर बताइए, कौन सा ऐसा नेता हुआ जिसने ऐसे इनिशिएटिव लिए जिसके पीछे हर लीडर फॉलो कर रहा है, हर राज्य का नेता फॉलो कर रहा है। और मैं ये मानता हूं कि नरेंद्र मोदी ने उस एस्पिरेशनल इंडिया को, एस्पिरेशन तो 15 अगस्त 1947 से थी, लेकिन एस्पिरेशनल इंडिया को वहां लाकर खड़ा किया। अब कुछ लोग परेशान होते हैं, तो भाई हम हैं हजारों वर्षों पुरानी संगीत, हम देश कोई 15 अगस्त 1947 वाला भारत नहीं है, भारत नहीं, ये भारत है और उसकी संस्कृति होगी तो काशी होगा, शिव भी होंगे, उसकी संस्कृति है तो राम भी है, अयोध्या भी होगा। और इसीलिए असली मुश्किल है कि ये जो मॉडल नरेंद्र मोदी ने डेवलप किया है, जो हमारे गर्व के साथ, हमारी संस्कृति के साथ, हमारे संस्कार के साथ, कहां सेमीकंडक्टर के मामले में भी दुनिया के मुकाबले खड़ा होने की ताकत देता है।
1: ओके, एस्पिरेशनल मॉडल, यू मे नॉट अग्री विद द मैनर ऑफ सेलिब्रेशन आशुतोष, बट इज देयर एन एस्पिरेशनल मॉडल दैट ही हैज मेनस्ट्रीम?
3: एक लाइन में खत्म कर रहा हूं मैं,
1: ठीक है, एक लाइन और देन आशुतोष,
3: एक लाइन जोड़ूं। मैंने जो शुरू में कहा कि नेहरू जी से तुलना मत कीजिए, नेहरू जी बहुत बड़े व्यक्ति थे, बड़े पिता के व्यक्ति थे। हमारे यहाँ इलाहाबाद में जितना इलाहाबाद विश्वविद्यालय का परिसर है, उससे बड़ा स्वराज भवन, आनंद भवन, इतने बड़े व्यक्ति थे, तो उनसे तुलना मत कीजिए। आपको तुलना करनी है तो गांधी के बाद कौन, गांधी सफाई, गांधी चरखा, गांधी आत्मनिर्भर, वो सब नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। गांधी के बाद कौन, उसका जवाब है नरेंद्र मोदी। नेहरू से तुलना मत कीजिए, नेहरू जी बहुत बड़े पिता के बेटे थे।
1: ओके, आई सस्पेक्ट दैट्स गोइंग टू क्रिएट अ बिट ऑफ कंट्रोवर्सी, बट यस आशुतोष, एस्पिरेशनल मॉडल।
0: No, I will not go to Nehru because that is a prerogative of the BJP, Sangh Parivar and Modi government. I will not go to the Nehru, but I will go to Suhail Seth. Suhail Seth recently has written a book which is called WTF India. I'll read only one sentence. A country that is becoming unlivable for us, the middle class. The country that is becoming unlivable for us, the middle class.
2: Now I this know book, why Ashutosh is no longer a functional journalist. This is in relation to urban malaise. It is in relation to the urban decay in India. Ashutosh, have some level of integrity. When you quote from my book, have the decency to quote the entire paragraph. But you won't do that. The difference between you and me is, I've written a book on the urban decay. Now you want to talk about the book? Thank you for giving me such great publicity. The book very clearly says, India's

मैं जहां भी जाता हूं, मोदी नहीं जाता, हजारों साल की वेद से विवेकानंद की महान परंपरा को 140 करोड़ लोगों उनके सपनों को लेकर के, उनको आकांक्षाओं को लेकर के मैं निकलता हूं।